तुम यही को नसत रेडियो सारंग 107.8 FM ई रंग रंगाळजीनी आता मी ऐकूया कार्यक्रम आयतरसो संदेश मानादिक डोलपी सेरावो आता शिकवण दिता

0: रेडियो सारंग 107.8 FM जय हे
1: रेडियो सारंग 107.8 FM रंग रंगदा बदक इत्ते तुलु प्रसारा

मारने का है, पर क्या कभी सोचा है इस अंडे का क्या फंडा है? ये कितना गहरा है, इस टकले सर के अंदर एक ब्रेन सुनेरा है, ये कुछ समझाता है, ये कुछ सिखलाता है। जरा गौर से सुनिएगा, हम गा के सुनाते हैं।